मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहिन पाग्यो। ए चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस मह पाग्यो।

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी

कला नाम करके खालसा ने जिन्हें आत्म रस नु जान लिया ओहो ही खालसा है। सिर्फ नाम दे नाल खालसा ने आप जिन मर्जी कह देने आओ खालसा जी, कई अपने नाम दे नाल भी

का कर चवर टलावा, चरण तूड़ मुख लाई। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। संत सहाई जीव के पव जल तारन हार, सब ते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार। संत सरन जो जर परे, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुनमीता नानक विनवंता,

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही पर दूर। साध की शोभा का नहीं आने, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तप स्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजरियां लगवाउन दे लई, सतसंगत हरि रस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दिया अमोल कड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनिया बना रहे हो, सचमुच इन्हां कड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रही हैं। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जिया के 300 साले दिहाड़े संगतां मना रही हैं। ये कितने दिहाड़े कट्ठे हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए, वडभागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहेगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हैं, परंतु साध संगत उस दी कुदरते कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज दे नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन किया, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरशां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो,

0: hombre. ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी साहिब दे विच वर्णन करते हैं। असी लोग ए सारिया रूहां सारिया आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया हुई हैं। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लख जून दे विच परम दे भटकते फिरते हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतते फिरते हां। अनेक तरह के दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेडे परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, ओ सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उनां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उनां दी चरण धूल नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखमनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिवजी

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान भगवान का दर्जा है, जिन्हू देवत्या दे सर्वोत्तम मने गए हैं। जा रहे हैं किसी जंगल के रास्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे ना ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती से नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हों लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पूछती है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तो कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी यह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: यह धरती का कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती की यह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्मज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साढ़े लोगों वास्ते। भावें संसारक तौर पर महापुरुषों के जीवन नूं कोई सास उसका कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सास संगत जिन्हां दे नां तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत, संत बाबा नंद सिंह तो उपरंत ते सात संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं सात संगत ते सुनांदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी सात संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे उह डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्होंने यह कहना कीता कि भाई गुरमुख सिंह, अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज असीं जल्दी जाना है, साडे कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असीं जल्दी जाना है, जल पानी छकन दा चाह पानी छकन दा सानू ना मजबूर ना करो, साडे कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी, साडे कोल टाइम तां नहीं है, परंतु असीं चाहुंदे हां कि असीं बाबा हरदित सिंह उन्हां दे इस ते असीं नमस्कार कर लईए, एक बारी गुरु साहिब नूं मत्था टेक लईए। संत गुरमुख सिंह जी हथ जोड़ के कहिंदे ने, जिवें आप जी दी मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरशां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असीं लोक मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुत इन्हें तो मत्था लाया भी नहीं, जे किसी ने लाया तो थोड़ा जा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। पांच मिनट निकल गए, सारे देख रहे हैं, दस मिनट निकल गए, पंद्रह मिनट निकल गए, बीस मिनट निकल गए, पच्ची मिनट निकल गए। बोलो
1: सतनाम,
0: इतने मिनट नमस्कार, इन्नी लम्मी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहंदे, असीं सोचदे हां भई 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है, टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच एक ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहंदे ने पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले तां तुसीं कहंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असी बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, ना तुसी मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन होया, असी तो अपने आप नूं नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बैटरी डाउन हो जाती है कम करदी करदी, फिर उस नूं चार्ज करन दी लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेक के असी अपने आप नूं चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो सात संग जिथे वाहिगुरु दा भजन, वाहिगुरु दा सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असी एवें नहीं कहंदे इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे तुसीं मत्था टेकदे हो ए धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसे ने परमात्मा दी याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे फिर पढ़ो,

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्होंने बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुओं को बैठा करते, भाई फकीर को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी साथ आए साधुओं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जलदे नहीं हन। सो बाहर साध संगत खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दिते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया। वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही सिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण ओह किथे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उहनां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है। जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजां प्यारां ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनूं इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डणा। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे, 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन लत्तां भी साध संगत कमजोर हो गई, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुन पिता जी सोचते हैं की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती की महापुरशो कृपा करो इस बालके नू अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इस बालके नू अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो सतनाम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनू तो कोई परवाह नहीं, तुहानू दुनिया की परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तो बई अगों की होके घेरदा है। बोलो सतनाम
1: श्री वाह।
0: ए बड़िया सास लम्मिया विचारा हन। सास बाबा जस्सा सिंह का ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ये फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहण कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहण कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ये बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज नांगल नहीं हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, बेद लाज तिन्ने त्याग दतिया। बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिन्ने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इस नूं घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उस नूं भी कई लोग लानता पाउण लग गए घर वाले नूं भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास संतोष जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सात संगत कीड़िया दे भौण ते सुट दिंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सात संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सात संग गलेल दे विच सात संगत पा के गोले चलाउंदे, सात संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सात संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सात संग तुफन जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ।

जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, जिस बारिक भूख कैसी नवनिध नाम निधान के तेरे मन पंछे सोलेसी।

भूख कैसी, नवनिध नाम निधान गए तेरे मन पंछे सोलैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी, बालक मुख

ऐसे जीने नू, ऐसे जीवन नू, सतगुरु ने त्रिगाकार करके आखे, जेड़ा जीवन नाम तो विहून है, जेड़ा जीवन नाम तो बिना है।

0: क्यों डिठो कड़ियाल एन दूसा मारिए हम दूसा दा क्या हाल।
1: फरीद साहब भगति करन गए वापस आए कि वेख देने बहुत वड्डा सारा एक दरवाजा जिस दरवाजे अंदर एक कड़ियाल टंगी। कड़ियाल नू वेख रहे सन एक संतरी आया हाथ विच लकड़ दा हथौड़ा फड़े उस हथौड़े दे नाल इस कड़ियाल ते चोटा मारनिया शुरू कीती। जद कड़ियाल नू चोटा वजिया फरीद साहब ने अपने मन नू संबोधन कीता ते सानू कल भी उपदेश जीवा नू उपदेश दे रहे कहिंदे ने फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल एन दोषा मारिए हम दोषा दा क्या। हे फरीद एन दोषा इसने कोई दोष भी नहीं कीता न दोषा ही मारिया जा रहा असी ता दोषी हां साडे दोषां दा की हाल होवेगा असी कितना वड्डा दोष कर रहे हां। मनुखी जामा भी धारण कीता संसार ते आए भी लेकिन बखूने जा रहे हैं किस तो नाम तो बिना। फरीद साहब बड़ा सुंदर ख्याल देंदे ने

हे इंसान, ख्याल कर अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता लून पनवा पाया किरतता होवा पाक पवित्र। इतने देवते जिन्हां नूं तू ग्रहण कीता भोजन दी शकल विच, लेकिन भोजन छक के तू प्रभु दा शुकराना नहीं कीता, उदा धन्नवाद नहीं कीता, उदा शुक्रिया अदा नहीं कीता, की कीता? कोठी जाई सके आ किस ते हो लगा दो, कोठी जगा जा कश्मीर दिता। हे इंसान, नाम तो विहूना जेड़ा मनुख है, ए थुका कहने दे विच ते मैले ते नहीं। जित मुख नाम ना उचरे, विन नामे ना सुखाए, नानक एवे जानिए तित मुख थुका पाए। ए थुका उसते मुंह ते पईयां जिन्हें नाम नु विसारे, जेड़ा नाम तो विहूना इंसान है। साहब कह रहे हैं

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलो मंग रहे ते मंगिया उथो ही जांदा है जिथो दात मिलदी हो, जिथो मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलो मंग रहे ने, पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगा, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथो जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ है। हां मंगना चाहिए पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं। इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ, फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा। इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी।

मंगनी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चात्रक दी नहीं आई जेड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है, ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारने चात्रक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे, बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव ने आल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे।